0: तुम्हें पता है अब्रॉड की सबसे खतरनाक चीज क्या है? तुम्हारा कंफर्ट जोन। क्योंकि भाई जब ये बच्चे अब्रॉड इंडिया से अब्रॉड आते हैं ना, इंडिया से नहीं चाहे कहीं से भी आ रहे हैं।
1: An Indian US based in US has gone viral after urging students studying abroad not to let survival jobs become permanent comfort zones।
0: ये मैनेज हो जाती है उनकी, और जैसे आपकी पढ़ाई खत्म होती है तो वो उसी जॉब को फुल टाइम बना लेते हैं, वही छोटी मोटी जॉब जो वो कर रहे होते हैं उसको फुल टाइम।
1: A message about staying focused on long term career goals has resonated with thousands of aspiring international students।
0: बढ़िया चल रही है वहीं पे भाई, ऐसा नहीं करना है, अपनी बढ़िया कॉर्पोरेट जॉब ढूंढो, अप्लाई करते रहो, और जो सही उनकी फील्ड वाली नौकरी है उसके लिए अप्लाई करते रहो, लगे रहो, मिल जाएगा, हो जाएगा।
2: मेरे पास पैसा नहीं पड़ा अब तो लगा दी, बोला मैं दी।
1: A Delhi Uber driver has inspired the internet after revealing that despite earning 80,000 rupees a month in rental income, he continues to work following a heart attack. His story of resilience, purpose and determination has touched thousands online.
2: जिसने भी property लिया वो बीवी को नाम,
3: अरे भाई साहब
2: अपने नाम से नहीं
3: लिया,
2: जो भी property है, मेरे पास दो लड़की है, लड़का नहीं है, मैं वो भी चाहत नहीं रखता हूँ, कल मैं नहीं कमाऊँ तो मेरा आराम से जिंदगी, दोनों प्रॉपर्टी बेचूंगा, लड़की का शादी कर दूंगा।
4: सो दिस मैन ओवर देयर यू कैन सी ही इज अ आर्मी गाय, ओके, ही आई टुक हेल्प फ्रॉम हिम, मैंने उसे सिर्फ ये पूछा कि ईवी स्टेशन कहाँ
1: है। एन इंडियन आर्मी जवान हैज वन हार्ट्स आफ्टर हेल्पिंग अ स्ट्रैंडेड इलेक्ट्रिक व्हीकल ओनर हुज बैटरी रन आउट मिड जर्नी। द सिंपल एक्ट ऑफ काइंडनेस क्विकली वेंट वायरल with social media users praising the soldier's willingness to step in and help.
4: This is Indian Army. This man has stood with me for half an hour till I charged my car, and now he is actually dropping me all the way out.
5: Today, I will exercise myself.
1: A Russian traveler has gone viral after trying a traditional face massage at a men's saloon in Delhi for just one

0: Flipkart delivery executive has won hearts after calling a customer instead of ringing doorbell to avoid disturbing the household. Shared by a Bengaluru mother, the thoughtful gesture has gone viral, with viewers praising the delivery partner's kindness and consideration.
1: But mortals too find the waters of Bombay irresistible. And no wonder, for Bombay has some of the finest beaches in India.
0: A vintage glimpse of Mumbai's Juhu Beach has gone viral, showing its clear shoreline, golden sand and calm waves nearly 50 years ago. The nostalgic images have sparked conversations about rapid urbanization, pollution and the importance of preserving the city's iconic coastline for future generations.
1: Murmuring of the palms, blue skies and the friendly people of Bombay.
2: मेरे पेरेंट्स बोलते थे हम पढ़ने के लिए नदियां तैर के जाते थे. मैं भी अपने बच्चों को बोलूंगी, हम अमेरिका में पानी पीने के लिए ना हर तीन दिन में $3.50 खर्च करके इतनी दूर से हैवी बोतल उठा के लाते थे.
0: An Indian woman living in the US has gone viral after sharing the realities of life abroad.
2: और जो लोग अब्रॉड आने के सपने देखते हैं ना, स्पेशली लड़कियों, कमर कस के आना. इंडिया का प्रिंसेस ट्रीटमेंट नहीं मिलने वाला यहाँ पे.
0: स्पेशली फॉर वुमेन फ्रॉम पेइंग फॉर ड्रिंकिंग वाटर टू कैरिंग हैवी बॉटल्स होम. शी अर्जिंग माय migrants not to expect the comfort and convenience many are accustomed to in India.
2: मैं भी अपने बच्चों को बोलूंगी, हम अमेरिका में पानी पीने के लिए ना हर तीन दिन में $3.50 खर्च करके इतनी दूर से हैवी बोतल उठा के लाते थे.
3: Desde aquí queríamos dar la enhorabuena a nuestros compatriotas argentinos.
0: A flight full of Argentina fans erupted in celebration after a flight announced their team had won the 2026 FIFA World Cup final. But the excitement quickly turned into stunned silence when passengers realized the announcement was nothing more than a prank.

0: टेस्टिंग कैमरे पर खुलासा किया था। उसके बाद कई दिनों तक ये बाहर था, लाइमलाइट में नहीं था, और बाद में फिर इसने टीटी एग्जाम महाराष्ट्र में जो था उसको लीक कराया और उसका मास्टरमाइंड था। उस मामले में इसकी वाइफ और कई अक्यूज्ड अरेस्ट हो चुके थे, लेकिन मास्टरमाइंड विजेंद्र गुप्ता फरार चल रहा था, जिसे फाइनली महाराष्ट्र पुलिस ने अरेस्ट किया है।
1: जी अरविंद, आपका बहुत बहुत शुक्रिया इन सारी जानकारी के लिए। सो देयर हैज बीन अ मैसिव ब्रेक थ्रू एज फार एज द महाराष्ट्र टीईटी पेपर लीक केस इज कंसर्न। द किंग पिन विजेंद्र गुप्ता हैज नाउ फाइनली बीन अरेस्टेड बाय द महाराष्ट्र कॉप्स। ही हैज बीन अरेस्टेड फ्रॉम बिहार।
2: 2018-19 में उसमें वो जेल गया। अब उसी कंपनी ने क्या किया कि एक प्रिंटिंग कंपनी जो होती है वो अलग होती है और एजेंसी जो टेंडर लेती है वो अलग होती है, अलग होती है। तो अब एजेंसी बदल के तो कोई एजेंसी नाम ले लेगा।
1: And now shifting focus, activist Sonam Wangchuk releases new video and issues clarification. The activist has expressed displeasure over critics who questioned his hunger strike and alleged that he struck a deal with the government to end his fast. He asked why his commitment to cause needed a character certificate. He even added that if he had to make a deal with the government, why would he fast for 26 days. Expressing regret, he said that after going through all this, these are the allegations that he has to face. The activist also shared a video from July 21st in which he can be seen confronting officials after being taken to a hospital from the protest site. In the video, he can be heard asking officials why he was being kept away from the protest site during his hunger strike and alleging that he was being harassed. Critics took a jibe at Wangchuk after he ended his hunger strike on July 23rd. By accepting a sip of juice from Union Minister J.P. Nadda, Wangchuk said that he ended his protest after receiving written assurance from the government on his demands.
3: अपने भाइयों और बहनों के छात्रों के लिए 26 दिन भूखा रहने के बाद, जिसमें कि मेरे 11 किलो शरीर खत्म हो चुका है, मसल्स चले गए हैं, ऑर्गन और दिमाग पर इरिवर्सिबल डैमेज लगभग होने के कागार पर पहुंचा है, और वो भी लद्दाख की कड़कती ठंड से दिल्ली की तपती धूप में बैठकर ये सब करने के बाद, क्या मुझे किसी से कैरेक्टर सर्टिफिकेट लेनी होगी कि मेरा अनशन कितना पवित्र था? मैंने तोड़ा तो किसके हाथों तोड़ा, उसके हाथों क्यों तोड़ा, इसके हाथों क्यों नहीं तोड़ा, क्या डील हुआ, क्या सौदा हुआ, ये सब मुझे जवाब देना होगा। अगर सौदा करना होता, डील करना होता, तो क्या 26 दिन भूखे रहना पड़ता है? कितनों ने डील किए हैं आपने देखा होगा, क्या वो इस तरह से डील करते हैं? क्या मैं आलीशान एयर कंडीशन कमरे में बैठ के डील सौदा नहीं कर सकता था? मुझे यहाँ दिल्ली की गर्मी में बाहर रोड साइड पर बैठकर डील करना पड़ता?
4: Yes, arrest me. What is this detaining me for 3 hours here on 26th day of my hunger? You all are harassing me. Yes, you. If I die of stress, it will be your responsibility.
5: What order does number के लिए आप लोगों को बदतमीजी कर रहे हो? Order है क्या? हाँ.
4: Please open. I'm going. Arrest me if you want.
1: Meanwhile, the government has now launched a major crackdown and overhaul of the examination system amid the escalating paper leak protests. From terminating 47 NTA officials and initiating criminal action against some, to planning structural reforms and pushing amendments to the Public Examinations Act, the centre is moving on multiple fronts. The NTA overhaul will include expert panel reforms, new senior management and fresh recruitment across key divisions. 4 general managers and 16 young professionals are set to be hired, while new subject experts and translators will also join the agency. The government also plans to strengthen cybersecurity, tighten monitoring at exam centres, build in-house digital forensics capabilities, and step up vigilance against exam malpractice. Now, this mega NTA reset comes after bureaucratic shake-up. Higher Education Secretary Vineet Joshi was removed on Thursday and was replaced by Naresh Pal Gangwar. So let us understand in detail the NTA overhaul that has already been

0: begun. So expert panel reforms rolled out. Recommendations made by the expert committee are now being put into action. New senior management to be hired. So the NTA will recruit experienced leaders to strengthen its administration. Four general managers to join the NTA. So four general managers will now be appointed to oversee the key operational functions. 16 young professionals to also be recruited. And these professionals will be hired to bring specialized skills and fresh expertise. In fact, hiring across 10 key divisions next. So the recruitment will expand across 10 important departments within the NTA. New subject experts and translators to also join. So more academic experts and translators will now be added to improve the exam quality and also multilingual support. Cybersecurity systems to be strengthened. So the NTA will enhance the cybersecurity to better protect the exam systems and also the data. Stronger monitoring of the exam centres. There will be oversight of examination centres which will be increased to prevent these irregularities. In fact, in-house digital forensics capability. So the NTA will also be developing its own digital forensic team to investigate exam-related cyber incidents. Tougher vigilance against exam malpractice. So stricter measures will be implemented to detect and also prevent cheating and also paper leaks. Now, shifting focus, the Lucknow Development Authority on Saturday, that is today, began demolishing the illegal portion of the Aliganj building where a devastating fire had claimed 15 lives on June 22nd. The action came after the building owner failed to remove the unauthorized construction despite a 15-day notice issued by the government body. The building housed Head Hopper Studios, a 3D art, VFX and game development company where many of the victims were working. The tragedy also exposed serious safety concerns as the structure had allegedly been approved for residential use but was being used commercially. Investigations pointed to multiple lapses including unauthorized construction, alleged violations of fire safety norms, inadequate emergency exits and regulatory failures as well. The incident triggered a wider crackdown on illegal commercial buildings and also renewed scrutiny of civic oversight. So the Lucknow Development Authority is now taking action and it has begun demolishing the illegal portion of the Aliganj building where a devastating fire had claimed 15 lives on June 22nd. Now this action comes after the building owner failed to remove the unauthorized construction despite a 15-day notice issued by the government body. And remember, this building housed Head Hopper Studios, a 3D art, VFX and game development company where many of the victims were working. And this tragedy also exposed serious safety concerns as the structure had allegedly been approved for residential use. This is a residential area where this building is situated, but it was instead being used commercially. So those are the lapses also that had emerged during the investigation. The investigation pointed to multiple lapses, including unauthorized construction, alleged violations of fire safety norms, inadequate emergency exits, and also regulatory failures. Now, this incident also triggered a wider crackdown on illegal commercial buildings and also the renewed scrutiny of civic oversight. My colleague Ashish Srivastava is now joining us with more details on this. Ashish, latest kya update hai? Kya demolition pura ho chuka hai is building ka?
1: देखिए जिस तरीके से इस पूरी बिल्डिंग में नक्शा बनाने को लेकर पूरे मानक पूरे नहीं थे जिसके बाद ही 15 दिन का समय दिया गया था और लखनऊ डेवलपमेंट अथॉरिटी जो लखनऊ की अथॉरिटी है उसने आज बुलडोजर एक्शन शुरू किया और उस बुलडोजर एक्शन में अभी बुलडोजर एक्शन किया जा रहा है क्योंकि एक जो सबसे बड़ी बिल्डिंग है उसी पर बुलडोजर ये चलाया जा रहा है जिसमें 3 फ्लोर की बिल्डिंग है और उसमें पहले ही हालांकि जो ओनर थे मालिक थे उन्होंने अपनी बिल्डिंग को गिराना शुरू कर दिया था क्योंकि एलडीए ने कहा था कि अगर आप पूरी बिल्डिंग खुद गिरा देते हैं तो एलडीए उसको नहीं गिराएगा लेकिन तय समय पर उसने बिल्डिंग को नहीं गिराया जिसके बाद आज बुलडोजर एक्शन शुरू हुआ है और उसमें बिल्डिंग को गिराया जा रहा है जो 3 फ्लोर की पूरी बनी हुई बिल्डिंग है और जो मानक की विपरीत थी जहां 15 लोगों की जान चली गई थी इसी बिल्डिंग में आग लगने के बाद मौके पर लखनऊ डेवलपमेंट अथॉरिटी और एक बुलडोजर वहां पर पहुंचा जिसके बाद उसको ऊपर से पिक करने के बाद गिराया जा रहा है। साफ तौर से इसमें जो लोग अधिकारी थे पहले ही सस्पेंड किए जा चुके हैं, कईयों पर जांच भी चल रही, स्पेशली एसआईटी की रिपोर्ट भी इसमें मुख्यमंत्री को जानी है। लेकिन इस बीच जो बुलडोजर एक्शन है वो इस पर किया जा रहा है, जिसमें तकरीबन ये 3 फ्लोर की जो बिल्डिंग है वो 4,000 स्क्वायर फुट में लगभग बनी हुई, उसके ऊपर ये आज कार्रवाई की जा रही है इसको ध्वस्तीकरण की, जिसमें की जो मानकों से पूरी नहीं थी और काफी समय से इसको नोटिस दिया गया था कि 15 दिन के अंदर इस पे कार्रवाई की जाएगी, जो
0: जी।
1: आज इसका नोटिस पूरा हो उसके बाद ये कार्रवाई की जा रही है।
0: जी आशीष, आपका बहुत बहुत शुक्रिया। सो दैट्स द लेटेस्ट दैट्स कमिंग इन फ्रॉम लखनऊ, वेयर दिस बिल्डिंग इन अलीगंज इज बीइंग डिमोलिश, द इलीगल कंस्ट्रक्शन इज बीइंग डिमोलिश, द डिमोलिशन इज स्टिल अंडर वे एंड अ 15-day डेडलाइन वॉज गिवन बट दैट वॉज इग्नोर्ड बाय द ओनर्स एंड नाउ द बुलडोजर एक्शन टेकिंग प्लेस। With that, it's a wrap on this bulletin. Thank you for watching India Today. More news and updates will continue on the other side.
2: You are watching India Today.
3: Need a good laugh? We know a place. Just for Laughs Radio brings you non-stop stand-up bits by the best comics in the game. From all-timers to rising stars. And the punchline? It's all waiting for you on TuneIn. Head on over to Just for Laughs Radio today.
4: Upper caste, which were dominating India, was suddenly being challenged.
5: And that was a movement which actually changed India in many ways.
6: और क्या करेंगे, जीविका के लिए तो कुछ करना ही होगा और हमारी प्रशासन जो है यही अब चाह रही है और यही करेंगे।
7: बीपी सिंह एंड एक्चुअली इंप्लीमेंटिंग द रिजर्वेशन बिकॉज़ हिज गवर्नमेंट ही थॉट वुड फॉल।
8: आई आस्क यू द यूथ ऑफ इंडिया नॉट टू एंटरटेन दीस फियर्स, योर इंटरेस्ट इज अपरमोस्ट इन माय माइंड। आई आस्क यू फॉर ट्रस्ट एंड पेशेंस। आई आस्क यू टू जॉइन मी इन बिल्डिंग अ बेटर फ्यूचर।
5: Changed Indian politics in many ways and brought caste back openly into the equation of politics.

0: इसीलिए यहाँ पर है अपने बच्चों के फ्यूचर के लिए।
1: और अगर मेरे नहीं भी आता तो मेरा फर्ज बनता है, देश के नागरिक के नाते फर्ज बनता है कि हमारे देश में जो भी गलत चीजें हो रही है तो उसमें हमें सपोर्ट करें।
0: इतनी दूर से यहाँ पर क्यों आए हैं?
2: मैम एक्चुअली मैं 20 तारीख को भी आई थी, उस दिन भी मैंने लाठी अंडे खाए हैं और मैं 3 दिन बाद आई हूँ क्योंकि उठने की हालत नहीं थी। अच्छा। तो अब आई हूँ मैं और मैं चाहती हूँ कि धर्मेंद्र प्रधान इस्तीफा दे, जल्दी से जल्दी दे। नरेंद्र मोदी ने जो बोला है कि वो फास्ट कोर्ट जारी करेंगे, लेकिन फास्ट कोर्ट नहीं चाहिए हमें, हमें सिर्फ धर्मेंद्र प्रधान का इस्तीफा ही चाहिए,
0: सिर्फ इस्तीफा चाहिए।
2: हाँ जी।
0: सोनम वांगचुक ने कल फास्ट तोड़ दिया है।
2: हाँ जी।
0: उन्होंने उनकी डिमांड है कि अगर उनकी डिमांड थी कि अगर कोई एक्शन ना हो तो वो अपना फास्ट तोड़ देंगे, क्या वो बहुत है या इस्तीफा ही चाहिए?
2: मैम हमें इस्तीफा चाहिए, लेकिन हमें सोनम वांगचुक जी की हेल्थ भी बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि ऐसे साइंटिस्ट मैम बहुत कम होते हैं, रेयर होते हैं।
0: तो
2: हाँ जी, वो हमारे साथ खड़े हैं।
0: आप क्या करती हैं?
2: मैम मैं वैसे डांसर हूँ, मैं आर्टिस्ट हूँ एक, और मैं फ्रीलांस वर्क करती हूँ। तो अब मेरे लिए ज़रूरी हो चुका है कि हम, मैं करती हूँ सारे आर्टिस्टों के, मतलब हम लोग बीजेपी के भी करते हैं, आर्टिस्ट हैं क्योंकि हम लोग तो कर, लेकिन हमारा मन नहीं करता है अंदर से करने का, उनके लिए परफॉर्म करने के लिए, तो हम अपना ही करते हैं, फ्रीलांस वर्क करते हैं, लेकिन हम कब तक फ्रीलांस वर्क करते रहेंगे ऐसे।
0: तो आप अनएम्प्लॉयमेंट के लिए हैं?
2: यस।
0: आपको एम्प्लॉयमेंट चाहिए?
2: यस।
0: तो उस इसीलिए आप इस मुद्दे से जुड़ी हैं। कितने साल की हैं?
2: मैम 28 की, 28। यस।
0: आप क्यों आई हैं?
2: मैम मैं भी सेम इसीलिए आई हूँ इनके साथ। नहीं बट मैं तो,
0: आप भी आई थी, आपको भी डंडे पड़े थे?
2: नहीं नहीं, नहीं मैं 20 को नहीं आई थी क्योंकि सारे रास्ते बंद थे तो नहीं आ पाई थी मैं, और मैं थोड़ा ऑफिस में भी जॉब करती हूँ, वैसे मेरी एज जो है 21 है, पर मैं हूँ तो स्टूडेंट ही, बस ये है कि थोड़ा फैमिली प्रॉब्लम की वजह से नहीं कर पा रही हूँ मैं स्टडी आगे, तो स्टूडेंट का साथ देने आई हूँ बस।
0: स्टूडेंट्स का साथ देने आई हैं? क्या मांगती हैं, क्या चाहती हैं?
2: जो स्टूडेंट मांगते हैं वही मैं मांगती हूँ।
0: वही आप मांग रहे हैं? क्यों, ऐसा क्या है?
2: क्या आपको नहीं पता क्या प्रॉब्लम हुई है?
0: नहीं मुझे तो पता है, आप बताएं।
2: सेम जो नीट का पेपर लीक हुआ है,
0: पेपर लीक की इशू है, इसीलिए आप यहाँ पर हैं और आप भी इस्तीफा मांग रहे हैं।
3: मेरा नाम मंगलम सिंह यादव है, मैं बुंदेलखंड से हूँ, झांसी जिले से।
0: झांसी से यहाँ पर आए हैं, वॉलंटियर हैं
3: जी।
0: क्यों वॉलंटियर किया?
3: वॉलंटियर इसलिए हमारे लिए लड़ाई लड़ी जा रही है, इस देश के लिए लड़ाई लड़ी जा रही है। हम तो झांसी से हैं जहाँ पहली क्रांति शुरू हुई थी, झांसी की रानी से, तो हम लोग खूनी में है क्रांति।
0: तो क्यों आए यहाँ पर?
3: अपने भविष्य को बचाने के लिए, और देश से भी अपील करूंगा, जितना यूथ घर पे अगर बैठा है 20 तारीख को भी, ये सब वीडियो देखने के बाद भी उनका खून नहीं गोला है, तो उनका खून खून नहीं पानी है, सबको आना चाहिए, अपना भविष्य बचाएं। इतिहास।
0: आपका भविष्य क्या था? आप क्या नीट पेपर दे रहे थे?
3: 2024 में दिया था, तब लीक हो गया था मेरे,
0: नीट दिया,
3: 612 नंबर मेरे आए थे, उसमें नहीं मिला था मुझे, जाहिर सी बात है। नीट में मेरे ठीक ठाक नंबर आए थे, वो पता ही नहीं चला कितने आए, लेकिन इसमें मेरा भगवान की कृपा से हो गया है, तो खुशी
0: हो गया इस बार।
3: इस बार मेरा हो गया है,
0: नीट में पास हो गए हो?
3: नीट में हो गया है।
0: तभी भी खड़े हुए हो यहाँ पर, ये मुझे पहले सम्मान हुआ।
3: मेरा हो गया, मेरे को मिल रहा है, लेकिन बहुत सारे साथियों को नीट में मिल रहा था, रीनीट में नहीं मिल पाया, तो कहीं ना कहीं तो सरकार की कमी है। जो एक जैसे मैं घर पे जाके मैंने नोट्स फाड़ दिए थे कि मेरा तो हो गया है नीट में, फिर जाके हमने दोबारा से उसके फ्लो चार्ट निकाले और रिवीजन किया, जब पता चला 9 दिन बाद कि नहीं हुआ है। तो ऐसे बहुत सारे युवा ने, एक महीने के अंदर जो गैप हो जाता है, बहुत सारी समस्या।
0: तो अभी जो री एग्जाम था
3: जी, री
0: वो आपने इस आंदोलन के बीच में आपने वो एग्जाम दिया?
3: हाँ।
0: आंदोलन छोड़ के एग्जाम दे के आए,
3: मतलब आंदोलन 21 मई को पेपर के बाद ही हम लोग ने ज्वाइन किया।
0: अच्छा, आपने 21 मई के बाद में?
3: हाँ, और हम लोग अभी 2-3 दिन के लिए घर पे चले गए थे, बाकी 13-14 दिन से लगातार अभी यहाँ पे हैं।
0: तो घर में बोला नहीं कि तुम्हारा तो क्लियर हो गया है, वापस आ जाओ, क्यों बिना बाद में धक्के खा रहे हो?
3: 20 तारीख के पहले तो कुछ नहीं बोला था, 20 तारीख के जैसे घर पे वीडियो वाले रोज फोन आ रहे हैं कि कब आ रहा है कब आ रहा है, लेकिन अब यहाँ है तो अब कोई दिक्कत नहीं है, घर पे होते तो नहीं आने देते।
0: अब यहाँ पर ही रहोगे?
3: अभी बस।
0: डिमांड क्या है?
3: नड्डा साहब से बात हुई है, अभी बता रहे थे अभिजीत भाई की बात हुई है, कल इस्तीफा की बात रखी जाएगी। और
0: इस्तीफा नहीं दिया तो?
3: इस्तीफा नहीं दिया तो 5 दिन की मोहलत देंगे, इस्तीफा नहीं दिया तो प्रधानमंत्री का इस्तीफा मांगेंगे। इस देश की जिम्मेदारी लेने को कोई तैयार नहीं है। जैसे मैं,
0: जो लोग आपको कह रहे हैं कि इसमें क्यों पढ़ रहे हो, फ्यूचर खराब हो जाएगा, नीट तो क्लियर कर लिया है।
3: मेरा फ्यूचर खराब हो जाए, लेकिन इस देश का फ्यूचर बदल जाएगा। इस यूथ के लिए इतिहास सवाल पूछेगा, भविष्य में हम लोगों से हमारे बच्चे सवाल पूछेंगे कि जब यूथ जैन जी इस देश में आपके लिए लड़ रहा था तो आप क्या कर रहे थे। तो मैं तो कह लूंगा कि मैं इस लड़ाई में साथ में था, लेकिन जो लोग घर पे आज भी बैठे हैं वो नहीं कह पाएंगे, वो मुंह नहीं दिखा पाएंगे।
0: सो ही इज क्लियर्ड हिज नीट बट ही स्टिल बैक हियर। इतनी सारे मीम्स चल रहे हैं, देखते हो फोन पे, सबसे फेवरेट वाला कौन सा है? जो बोल पाओ वही बोलो कैमरे पे।
3: अब मीम तो मैं वैसे अभी तक जब से प्रोटेस्ट में आया हूँ तो प्रोटेस्ट की रील दिख रही है। ठीक है, सबसे अच्छा प्रोटेस्ट का मीम मैं बता देता हूँ, रेजिग्नेशन दे दो गुचू पूछू, तो वो वाला बहुत चल रहा है। अच्छे अच्छे

0: tears that they are shedding during these protests, and that they have nothing to do with the protests, that they have been exploiting the youth for years now. And he also mentioned about the steps that have been taken by the Modi government to protect the students, and how the Modi government has been working so that there are no irregularities in the exam. My colleague Ashish Srivastav is now joining us on the story. Ashish, Yogi Adityanath ne ek bar fir se attack kiya hai Samajwadi Party ko, Congress ko, ye kehte hue ki ye jo aansu ye log baha rahe hain, ye magarmach ke aansu hain aur inka koi lena dena nahi hai jo chhatron ke concerns hain ya jo chhatron ka cause hai, protest hai usse.
1: Ab bilkul dekhiye, Yogi Adityanath ka ye sabse bada keh sakte hain ki attack hai, aur unhone saaf kaha hai ki jo अभी तक नौजवान नौकरी पर सफाई का तक उन्होंने इस बात के जिक्र किया, और ये भी कहा कि जो शोषण कर रहे थे और कहीं ना कहीं जो भविष्य के साथ खिलवाड़ कर रहे थे वो कांग्रेस और समाजवादी पार्टी की तरह हैं, और आंसू घड़ियाली आंसू बहा रहे हैं. यही उन्होंने ये भी कहा कि जबकि प्रधानमंत्री जी ने भविष्य को देखते हुए पिछले तीन दिनों के अंदर बड़े निर्णय लिए, और साथ ही साथ भविष्य को खिलवाड़ करने वालों नकल माफियाओं पर 10 वर्ष की सजा और 10 करोड़ रुपए जुर्माना का फैसला किया, और समाजवादी पार्टी और कांग्रेस जो इस समय प्रोटेस्ट में शामिल है, जो इस समय एक तरीके से खड़ी हुई है, उसको लेकर ये कहा ये इनके घड़ियाली आंसू हैं, और इन्होंने ही कई छात्रों को जो अंधेरे में रखा, उनका जीवन अंधकारमय कर दिया, और पूरी पीढ़ी भविष्य के साथ खिलवाड़ किया है. आज वही यहीं पर प्रोटेस्ट में खड़े होकर घड़ियाली आंसू बहा रहे हैं. तो ये युवाओं का शोषण करने वाले लोग ही हैं, और जबकि जो प्रधानमंत्री है वो तो दोनों का कंपैरिजन भी दिखाया है और साफ कहा है कि पहले कैसी की सरकार और उस समय किस तरीके से शोषण करते थे, और आज वही लोग उनके साथ खड़े होकर घड़ियाली आंसू बहा रहे हैं. जबकि प्रधानमंत्री जी बड़े निर्णय ले रहे हैं, उन्होंने बड़ी कार्रवाई कर रहे हैं, कानून बना रहे हैं, इस पर उन्होंने कानून क्यों नहीं बनाया, तरीके का इनका मैसेज है साफ तौर से. तो कहीं ना कहीं एक बड़ा अटैक है अपोजिशन पर, स्पेशली समाजवादी पार्टी और कांग्रेस पर, कि जिस तरीके से चाचा, जिन्होंने ये भी कहा कि जो चाचा भतीजे हैं उनकी जोड़ी वसूली से निकाली जाती थी, मतलब जो समाजवादी पार्टी है उनमें शिवपाल सिंह यादव और अखिलेश यादव पर ये कमेंट करते हुए उन्होंने कहा है कि नौजवानों की नौकरी तक सैफई सिंडिकेट से घटी डालता रहा है, यानी सैफई का जो एक एरिया है वो पूरी तरीके से उनका वर्चस्व रहता था, और इसीलिए ये बातें की तो बहुत महत्वपूर्ण हो जाता है आज के सिनेरियो में.
0: बिल्कुल आशीष, आपका शुक्रिया इन सारी जानकारी के लिए. सो बिग अटैक बाय उत्तर प्रदेश चीफ मिनिस्टर योगी आदित्यनाथ अगेंस्ट द कांग्रेस एंड द समाजवादी पार्टी. लिसन इन.
2: बहन और भाइयों, जिन्होंने युवाओं का शोषण किया, छात्रों के सामने अंधकार में जीवन दिया था, पूरी की पूरी पीढ़ी के भविष्य के साथ खिलवाड़ किया था, आज जो समाजवादी पार्टी और कांग्रेस किस प्रकार की घड़ियाली आंसू बहाने का काम कर रही है. हम आभारी हैं प्रधानमंत्री मोदी जी के प्रति, जिन्होंने छात्रों के भविष्य को देखते हुए पिछले तीन दिनों के अंदर बड़े बड़े निर्णय लिए हैं. उन्होंने कहा था, प्रधानमंत्री मोदी जी ने घोषणा की और केंद्रीय कैबिनेट ने कल निर्णय लिया कि छात्रों के भविष्य के साथ खिलवाड़ करने वाले नकल माफिया को कम से कम 10 वर्ष की सजा और 10 करोड़ रुपए तक की फाइन की व्यवस्था करेगी.
0: And with that, it's a wrap on this bulletin. Thank you for watching India Today. For more news and updates, keep watching India Today. We'll be back with more stories on the other side.
3: You are watching India Today.
4: You may already think of TuneIn as your go-to audio app, but it's also your go-everywhere audio app. Because TuneIn works on just about every device you already use. Smart speakers? Yep. In your car? Absolutely. Phone or tablet? Yeah, of course. Wherever you are, your audio comes with you. And if you want to go hands-free, just say open TuneIn Live on your Alexa-enabled device and follow the interactive prompts to find the station you're looking for. No tapping, no searching. Just press play with your voice.
5: If you want to scale the media heights, we will teach you the ropes. There is no peak in journalism that our mentors haven't scaled. So look no further. join our postgraduate diploma programs and gain guaranteed internship and proven placement record with top media houses and companies. For more information, visit IndiaTodayMediaInstitute.in or call 95600-65465.
6: राष्ट्रपति जी ने आपातकाल की घोषणा की है।
7: We launched the magazine. This is in the middle of the emergency.
8: What she did was absolute grit.
9: There can be no press freedom.
7: Threaten us. You have a press, we can shut it down.

0: And a crucial Delhi police briefing shortly, in just a while from now. Delhi police will be briefing the media on Jantar Mantar stir. And Delhi police, meanwhile, have fortified the barricades at Jantar Mantar. Iron sheets have been bolted to roads to secure the barricades. Barricades have been chained together on the Sansad Marg. Students stay put as the security tightens. Police have used bolts and nails to prevent the barricade movement. Joint CP Vijay Singh reviews the security arrangements. And as per him, situation is currently normal. Authorities decided security measures and heavy barricading is in place ahead of the protest. Sansad Marg is under tight police watch. So that's the latest that's coming in from the national capital, where security is being tightened. And Joint CP has said that there are nuts and bolts being used to secure the barricades. And this is being done on the Sansad Marg. In fact, Delhi police will also be briefing the media shortly. But before that, we are telling our viewers how Delhi police have fortified the barricades at Jantar Mantar. In fact, iron sheets have been bolted to the road to secure these barricades from moving. And they have also been chained together. This has been done on the Sansad Marg, and security has been tightened. Police have used bolts and nails to prevent the barricade movement on Sansad Marg. So Joint CP Vijay Singh is reviewing the security arrangements, and he has said that the situation is currently normal at Jantar Mantar and authorities have decided these security measures. My colleague Anshul Singh is now joining us with more details on this. Anshul, Delhi police briefing is likely in just a while from now. What is expected from this briefing? What all issues will the Delhi police be addressing in this?
1: Well, over the last few days, specifically from the 20th of July, there has been a spree of fake news that has surfaced on social media platforms, and Delhi Police is constantly working to make sure that all these fake news and fake myths that are posted on social media platforms, that could be busted. And hence, today the press conference is being conducted by DCP Central, in which he will actually try to go ahead and put facts in order and try to negate the manner in which there has been a spree of fake news that has spread through social media somewhere or the other, inciting anger amongst the protesters as well, and somewhere or the other in an attempt to create a law and order situation on ground zero. But today, the Delhi police will officially come on record, will take questions, will actually try to put forth their point of view as to what exactly transpired and how fake news is being provocated on social media and what are the exact facts in order. So just in the next few minutes, we are expecting the press conference to start, and it remains to be seen what are the kind of narratives that are being pushed through on social media that the Delhi police will try to bust through this press conference.
0: All right, Anshul, thank you for those details. So in just a few minutes, the Delhi police briefing will be beginning. The July 20 CJP protests at Jantar Mantar turned violent with clashes, vandalism and attacks on police personnel. Now, Delhi police say that its facial recognition system has identified around 2,500 people with criminal backgrounds moving around the protest site and nearby areas between July 20 and 24. The police say that some of these criminal elements were also allegedly involved in the vandalism reported in the New Delhi area. India Today has accessed photographs of some of those identified, including several history cheaters whose identities were established through facial recognition, CCTV footage and social media analysis. Now, this development comes after protesters allegedly vandalized vehicles and buses, while around 130 police personnel were injured in the violence. And in fact, yesterday, Nihangs brandishing sticks and performing stunts at Parliament Street sparked panic among onlookers and pushed the crowd to run for safety. Take a look at what happened.
2: Oh,
0: Meanwhile, the standoff over the NEET paper leak enters a crucial day today. The third round of talks between the government and the representatives of the Cockroach Janata Party are scheduled to take place around 3:30 p.m. They're going to hold the third round of talks. The centre is hoping to build on the progress made during Friday's nearly two-hour meeting, where both sides described the discussions as cordial and agreed to continue the dialogue. The CJP remains firm on its three key demands: the resignation of Education Minister Dharmendra Pradhan, 1 crore rupees compensation for the families of the students who died by suicide, and no legal action against peaceful protesters. CJP claimed the government responded positively to the compensation and protest-related demands, but sought more time on the demand for Pradhan's resignation. Meanwhile, Rahul Gandhi claimed that government is considering shifting Education Minister Dharmendra Pradhan to another portfolio and stressed that all the demands of students must be met and Prime Minister Modi should apologize for the police action. Government sources meanwhile maintain that Dharmendra Pradhan will not resign, insisting the focus is on reforms, accountability and fixing the examination system.
2: There's some talk going on in Mr. Modi's cabinet that the solution is to move Mr. Dharmendra Pradhan from education to some other ministry. This is not acceptable to the students of India. It is not acceptable to anybody. The reason is Mr. Pradhan is a symbol of corruption and of what has happened to the future of India's children. He is a symbol of the destruction of the most valuable thing that this country has, which is our students and their future. And so there is going to be no conversation about Mr. Dharmendra Pradhan being moved here, moved there, put behind, forward, nothing. Mr. Dharmendra Pradhan has to be sacked, period. There are thousands and thousands of youngsters who have had lathis break their legs, lathis break their heads, pellets in their bodies. The people who have done this, the organizers and the implementers, need to be punished and made accountable. And the third thing is the leader of this entire machinery that is doing this, Mr. Narendra Modi, has to apologize for what he has done to the students and the future of this country. This is all the system that is attacking them. I told them inside. I said, do not worry. Do not worry. No amount of strength. The entire Indian government, every single person in the Indian government cannot move you from there. So, jitna karna hai, wo kare. Band karna hai, band karo. Dhamkana hai, dhamkao. Kuch karna hai, karo. Hum nahi hatne wale hain. Ye nahi hatne wale hain. Ye Hindustan ke future hain. Inko dekh lo achhi tarah. Isse koi nahi lad sakta. Narendra Modi is India's past. The past can never fight the future. Thank you.
3: Is desh ke naujawano, chhatron ki demands hai. No step back on Dharmendra Pradhan's resignation. No change in ministry. No bill against paper leak is going to satisfy the demand ki Dharmendra, replace the demand ki Dharmendra Pradhan ka istifa hona chahiye. Koi bhi accountability 20 tarikh ki jo hinsa hui hai us pe कमिश्नर ऑफ पुलिस को भी होम मिनिस्टर को भी लेनी होगी. इस पर कोई डिस्कशन कोई भी ऊपर नीचे हमें एक्सेप्टेबल नहीं है. प्रधानमंत्री को इस देश के नौजवानों और छात्रों से माफी मांगनी होगी. ये तीनों डिमांड्स रेज करने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया सर.
4: कल की मीटिंग में कॉम्पनसेशन और लीगल केसेस को लेके पॉजिटिव आंसर आया था. इन प्रिंसिपल एग्रीमेंट मिला था. हमें उम्मीद है कि आज वो रिटर्न एग्रीमेंट भी मिलेगा. लेकिन जो मेन डिमांड है धर्मेंद्र प्रधान का इस्तीफा, उसको लेकर अभी तक कोई ठोस डिसीजन नहीं आया है. बल्कि जो हम कल मेनस्ट्रीम मीडिया पे देख रहे थे कि सूत्र कह रहे हैं कि प्रधान जी इस्तीफा नहीं देंगे, तो अगर प्रधान जी इस्तीफा नहीं देंगे तो बता दीजिए फिर इस तरह की मीटिंग्स का कोई मतलब नहीं है. फिर हम जो है आगे की हमारी जो भी रणनीति रहेगी उस पर काम करेंगे.
5: ये कोई ना कोई बयान लेके कुछ मासूम लोगों को सामने लेके बार बार आकर के राष्ट्र को चैलेंज करते हैं. ऐसे कुछ अपने देश में हैं और इनको बाहर से मदद मिलती है, फंडिंग होती है, और वही कॉमन जो चेहरा है वही आके वही कॉमन बातें करते हैं. सरकार को चैलेंज करना, संविधान को, लोकतंत्र को चैलेंज करना, और पुलिस को, जनता को, मीडिया को अटैक करना बार बार हम देखते हैं, दो चार साल में एक बार होता है। ये लोग अपना अस्तित्व जाहिर करते हैं और कुछ नहीं है, जनता में इनका कोई प्रभाव नहीं है। आज देश में जो सरकार है सबको, सबके अधिकार को सुरक्षित किया है, लोकतांत्रिक परिवेश है, इसलिए इस प्रकार करने का प्रयास कर रहे हैं। लेकिन इसका जो मिसयूज कर रहे हैं उनको भी भुगतना पड़ेगा, कानून का ऊपर कोई नहीं है।
0: In fact, Delhi police have fortified barricades at Jantar Mantar. Delhi police have bolted iron sheets to the road to reinforce barricades on Sansad Marg. The barricades have also been chained together to prevent movement. Police have used bolts and nails to ensure the barricades cannot be moved or toppled. Joint CP Vijay Singh reviewed the security arrangements. Speaking to India Today, Vijay Singh said that the situation remains normal and that police are assessing the crowd. A large number of protesters continue to remain at Jantar Mantar. Meanwhile, sources told India Today that the CJP may announce a fresh march to Parliament on Monday. A decision is likely after the third round of talks between CJP representatives and the government, scheduled to be held today. After the conclusion of that meeting, the call can be taken by the CJP.
6: इस वक्त हम मौजूद हैं जय सिंह रोड पर। सामने जंतर मंतर का प्रोटेस्ट साइट है, आप देखिए, बीच में ये पार्लियामेंट स्ट्रीट है और इस पूरे इलाके को पुलिस ने बैरिकेटिंग करके, देखिए लेयर वाइज अगर आप देखेंगे तो हर तरफ कम से कम 6 से 7 लेयर बैरिकेटिंग पुलिस के द्वारा की गई है और सामने आपको लोगों की भीड़ आती हुई नजर आएगी। आप देखिए, अगर आप देखेंगे संसद मार्ग की तरफ तो सीपी की तरफ से लगातार यहां पर भीड़ जो है वो आगे बढ़ रही है। अब हम पुलिस की सुरक्षा के बारे में दिखाते हैं, जो ये बैरिकेटिंग है आप देखिए, 1, 2, 3 लेयर की बैरिकेटिंग, उनको चेन से आपस में बांधा गया है, रस्सी से बांधा गया है ताकि अगर हटाने की कोशिश की जाए तो एक बैरिकेट एक हटे नहीं। लेकिन उसके बाद आप देखिए, ये नीचे आपको लोहे की शीट नजर आएगी और इन लोहे की शीट्स, ये जो आप देख रहे हैं ये बैरिकेट, इससे जुड़ी हुई है और इन शीट्स को आप देखिए जमीन में, यहां पर अगर आप ये देखेंगे तो ये पेंच लगे हुए हैं, इनके जरिए जमीन में इनको फिक्स कर दिया गया, बीच सड़क पर इनको फिक्स कर दिया गया है। कोशिश ये है कि जब अगर कभी सिचुएशन खराब हो और प्रदर्शनकारी इस तरफ बढ़ें और इसको ढकेलने की कोशिश करें तो ये इसे हटाया ना जा सके। तो इस तरीके से आप देखेंगे पूरी रोड पर इसे इस तरीके से फिक्स किया गया है। इधर ही नहीं, आगे की तरफ भी इसको पूरा अगर आप देखेंगे तो इसे फिक्स किया गया है।
7: नॉर्मल है सिचुएशन,
6: यहाँ पे बैरिकेड हमने देखा सर फिक्स करके लगाया गया, तो ये तो एक नया पैटर्न,
7: ये इसमें कंपिटेंट अथॉरिटी बताएगी इसके बारे में।
6: और भीड़ कितनी होगी सर और कैसे उसको नजर रखे हुए हैं आप लोग खुद? मैं देख रहा हूँ कि ज्वाइंट सीपी आप हैं और आप एकदम पैदल चल के पूरी चीजों पर नजर रखे।
7: कंपिटेंट अथॉरिटी बताएगी, इसका क्राउड का असेसमेंट हो रहा है तो कंपिटेंट अथॉरिटी जो बताएगी। थैंक यू।
0: Some more news coming in. Public Exam Amendment Bill in Lok Sabha on Monday. India Today accesses exclusive details of the bill. As per the bill, there is going to be a jail term of 10 years for the accused in paper leak. So if this bill is passed in the parliament, there will be a jail term of 10 years for the accused in case of paper leak. So this bill is all set to be tabled in the Lok Sabha on Monday. Remember, it got a green signal in the cabinet, and after which it is all set to be tabled in the Lok Sabha on Monday. This is the Public Exam Amendment Bill, the bill that Prime Minister Modi also was talking about in his video. And India Today now has accessed the exclusive details of this bill. If this bill is passed and it becomes a law, there will be a jail term of 10 years for the accused in case of paper leak. My colleague Piyush Mishra is now joining us with more details on this bill that is all set to be tabled in the Lok Sabha on Monday. Piyush, give us more details about the Public Exam Amendment Bill.
8: Well, that's a big development which is now coming in. The amendment bill which was here by the cabinet will be tabled in Lok Sabha on Monday. But the imprisonment term has now been increased to 10 years and this bill will be tabled by the government has been increased from 5 years to 10 years, and the penalty has also been increased according to this bill. You would remember that Narendra Modi gave his message to the people and it is very, very clear that government is not only looking forward to set up the fast track course, but also will come up with more fast-track penalties so that the paper leaks can be solved. Now, public exam amendment will be tabled in Lok Sabha on Monday, which is certainly another step by the government so that the paper leaks can be stopped. In the cabinet, where after the recommendations from all the stakeholders, the government has come up with this amendment bill. It is certainly going to be another step where the government would try to tell to the people of this country that yes, the government is taking all the steps so that the paper leaks can be stopped and it can somewhere get them people who have always been indulged in such a gross power.
0: All right, Piyush, do stay with us. So, it's the Prevention of Unfair Means Amendment Bill 2026 that is all set to be tabled in the Lok Sabha on Monday. Now, let us take a look at the key highlights. So, there will be stricter punishment for exam fraud if this bill is passed. There will be minimum imprisonment increase from 3 years to 5 years, with the maximum extended to 10 years. The maximum fine has been raised from 10 lakh rupees to 50 lakh rupees. Tougher action against the service providers. The maximum penalty for service providers involved in malpractice has now been increased from 1 crore rupees to 5 crore rupees, while the period of debarment has been doubled from 4 years to 8 years. Higher punishment for company officials, directors, senior management or persons in charge found complicit in exam fraud will face a minimum 5-year jail term and fines up to 5 crore rupees. Organized exam crime penalties enhanced for organized exam-related crimes, the minimum imprisonment has been increased from 5 years to 7 years, while the minimum fine has been raised from 1 crore rupees to 10 crore rupees. Special task force provision. The central government will be empowered to constitute a special task force to investigate serious public examination offences. In fact, time-bound investigation. Investigations by police, central agencies or the special task force must be completed within 2 months. Special fast-track courts. Every state and union territory will designate special fast-track courts to exclusively hear offences under this Act. Mandatory speedy trials. Trials will be conducted day-to-day and must be completed within 3 months of filing the charge sheet. Special public prosecutors. States and union territories will appoint special public prosecutors for these fast-track courts to ensure quicker prosecution, and appeals will also be streamlined. Appeals against special fast-track court judgments will lie directly before a division bench of the High Court, with an effort to dispose of appeals within 3 months, and appeals must generally be filed within 30 days. Which is extendable up to 90 days in exceptional cases. My colleague Piyush Mishra continues to stay with us. Piyush, but will the opposition back this bill? Because the opposition has been adamant that first we want the resignation of Dharmendra Pradhan and only then will we discuss anything else. All right, we'll try to reconnect with Piyush Mishra, but the Public Examination Amendment Bill 2026 is all set to be tabled in the Lok Sabha on Monday. This got a green signal in the cabinet meeting and now it is set to be introduced in the parliament. And what does this bill include? So this mentions about stricter punishment for exam fraud. The minimum imprisonment has been increased from 3 years to 5 years, with the maximum extended to 10 years. In fact, the maximum fine has also been raised from 10 lakh rupees to 50 lakh rupees. Some more news coming in. BJP reaches out to NEET toppers in Lucknow. Pankaj Chaudhary meets NEET meritorious students. BJP assures fair and transparent exam system. BJP says youth's future is government's top priority. Strict action against paper leak accused. Government to continue crackdown on paper leak mafia. BJP highlights commitment to credible examination. Pankaj Chaudhary congratulates NEET toppers. BJP steps up its outreach to students and families. And the government reaffirms zero tolerance on exam fraud. So this is the BJP's NEET outreach, the student outreach. BJP has reached out to the NEET toppers in Lucknow with Pankaj Chaudhary meeting the meritorious students. And he has also assured fair and transparent exam system. He has also said that how youth's future is the government's top priority. And there will be strict action that will be taken against the paper leak accused, and that the government will continue its crackdown on paper leak mafia. In fact, BJP has also highlighted commitment to credible exams. And Delhi police are now holding a press briefing. Let's listen.
9: Vaishali, ready? Ready? Okay. Ready whenever you are.
10: Yes, sir. Yeah, yes, sir.
9: Okay. Yeah, you are.
10: Yeah.
9: Chal. Namaskar. पिछले कई हफ्तों से जंतर मंतर पर चल रहे विरोध प्रदर्शन से जुड़ी हालिया घटनाओं पर आयोजित इस प्रेस ब्रीफिंग में मीडिया के सभी साथियों का स्वागत है। जैसा कि आप जानते हैं, पिछले कई हफ्तों से जंतर मंतर पर कॉकरोच जनता पार्टी के बैनर तले प्रदर्शन चल रहा है। इस प्रदर्शन की एक खास बात यह है कि इसमें सोशल मीडिया, खास तौर पर इंस्टाग्राम का बड़े पैमाने पर इस्तेमाल किया जा रहा है। आज की युवा पीढ़ी के लिए यह न्यूज और अपडेट पाने का एक बड़ा सोर्स बन चुका है। सोशल मीडिया के इस प्रोटेस्ट संबंधित उपयोग में कई बार यह भी देखा गया है कि कई असत्य, भ्रामक एवं गुमराह करने वाले पोस्ट भी शेयर किए गए हैं। इसके चलते कानून व्यवस्था में प्रतिकूल प्रभाव भी पड़ता है। हम सभी जानते हैं कि सोशल मीडिया पर कोई भी जानकारी बहुत ही तेजी से वायरल हो जाती है, लेकिन हर पोस्ट, वीडियो या फोटो सही हो यह जरूरी नहीं है। इसीलिए किसी भी जानकारी पर भरोसा करने से पहले या उसे आगे शेयर करने से पहले उसका फैक्ट चेक करना बेहद जरूरी है। दिल्ली पुलिस भी सोशल मीडिया पर लगातार निगरानी रखे हुई है। फेक न्यूज, एआई और डीप फेक वीडियोस, एडिटेड क्लिप्स और गुमराह करने वाली पोस्ट के बारे में हम लगातार अपने सोशल मीडिया हैंडल्स के जरिए जानकारी साझा कर रहे हैं, ताकि लोग सही और गलत जानकारी के बीच फर्क समझ सके। आज की इस ब्रीफिंग का उद्देश्य आपके सामने फैक्ट्स रखना है और यह बताना है कि किस तरह सोशल मीडिया पर गलत जानकारी और फेक नैरेटिव फैलाने की कोशिश की जा रही है। मेरा प्रयास रहेगा कि मैं जो भी जानकारी आपके साथ साझा करूं, उसके फैक्ट्स भी आपके साथ साथ आपके सामने यहीं इसी स्क्रीन पर सामने रखूं। मैं कुछ ऐसी सोशल मीडिया पोस्ट का जिक्र करना चाहूंगा जिनका मकसद पैनिक फैलाना या सिंपल फैक्ट्स को तोड़ मरोड़ कर मिस इन्फॉर्मेशन फैलाना नजर आ रहा है। इस पूरी प्रक्रिया में मेरी सहायता वैशाली करेंगी। यहां पे सबसे पहले मैं उस सोशल मीडिया पोस्ट का जिक्र करना चाहता हूं जिसमें दावा किया गया कि 20 जुलाई की घटनाओं के दौरान पुलिस कार्रवाई की वजह से एक महिला की मौत हो गई। दिल्ली पुलिस ने इस दावे का खंडन किया और स्पष्ट किया कि प्रदर्शन के दौरान किसी की भी मृत्यु नहीं हुई है। आप स्क्रीन पर भी देख सकते हैं जो फेक न्यूज अलर्ट हमने जनरेट किया। नेक्स्ट दिखाइए। जैसे से पहले ये र्यूमर जो सर्कुलेट कर रहा था उसके लिए हमारा जो पोस्ट हमने डाला दिल्ली पुलिस ने, यह भी आप देख सकते हैं। इसी तरह एक राजनेता ने रात में एक वीडियो बनाकर सोशल मीडिया पर डाला जिसमें वो दावा कर रहे हैं कि केंद्र सरकार जंतर मंतर पर प्रदर्शनकारियों के खिलाफ क्रैकडाउन की तैयारी कर रही है। इस वीडियो से लोगों में डर, भ्रम और अफरा तफरी की प्रबल संभावना बनी। दिल्ली पुलिस ने यह भी स्पष्ट किया कि ऐसी कोई कार्रवाई नहीं होने जा रही है और लोगों से अपील की कि बिना पुष्टि वाले दावों पर बिल्कुल भी भरोसा ना करें। हमारी जांच में यह भी सामने आया कि पाकिस्तान से चलाए जा रहे कुछ सोशल मीडिया अकाउंट्स फेक कंटेंट फैला रहे हैं। दिल्ली पुलिस संबंधित एजेंसियों के एक साथ मिलकर ऐसे और अकाउंट्स की पहचान करने पर लगातार काम कर रही है। ऐसे 400 से अधिक हैंडल्स की अब तक पहचान कर ली गई है और उन्हें AI जनरेटेड कंटेंट, डीपफेक वीडियो, एडिटेड तस्वीरें और प्रदर्शन से जुड़ी अन्य झूठी सामग्री फैलाने के कारण ब्लॉक किया गया है।
11: दोस्तों, आज
9: ऐसे ही कुछ हैंडल्स ऑपरेशन सिंदूर के दौरान भी फेक इंफॉर्मेशन फैलाने में सक्रिय पाए गए थे। इन सोशल मीडिया अकाउंट्स ने कई वरिष्ठ अधिकारियों के आधिकारिक बयानों को एडिट करके और विजुअल कंटेंट के साथ छेड़छाड़ करके लोगों को गुमराह करने की कोशिश की। फर्जी कंटेंट में AI या डीप फेक वीडियो में शामिल एक श्री सोनम वांगचुक जी का भी वीडियो है, वो मैं अभी आपको यहां पे दिखाऊंगा।
11: दोस्तों, आज मैं आपको बताना चाहता हूं, उस दिन जब मुझे जबरदस्ती उठाकर ले जाया जा रहा था, उन्होंने मेरे लिए अपमानजनक शब्दों का इस्तेमाल किया। मैं बार बार कहता रहा, कृपया ऐसा मत कीजिए। मैं चिल्लाता रहा लेकिन किसी ने मेरी बात नहीं सुनी।
9: ठीक है, एक अन्य डीपफेक वीडियो में लेफ्टिनेंट जनरल राजीव पुरी DGMO के नाम से एक झूठा बयान जोड़कर यह दावा किया गया कि चल रहे स्टूडेंट्स प्रोटेस्ट के कारण भारतीय सेना को नई दिल्ली में तैनात किया जा रहा है।
11: प्राइम मिनिस्टर श्री नरेंद्र मोदी जी, आई हैव ऑर्डर्ड द डिप्लॉयमेंट ऑफ इंडियन फोर्सेस टू न्यू दिल्ली। वी मस्ट क्रश द एंटी नेशनल्स एंड टेररिस्ट प्रोटेस्टिंग इन जंतर मंतर न्यू दिल्ली। These terrorists have attacked police and RAF personnel while blackmailing the government. I want to make it clear that we will crush every head that.
9: ऐसे कई सारे और वीडियोज हैं, बट आज दिखाने के लिए हमें कुछ वीडियोज आपके सामने लेके आए हैं। पेपर लीक और डिफरेंट कॉम्पिटेटिव एग्जाम्स में इररेगुलरिटीज के खिलाफ भारत सरकार की कमिटमेंट के तहत दिल्ली पुलिस ने क्राइम ब्रांच में एक स्पेशल टास्क फोर्स का गठन किया है। यह टीम एक DCP स्तर के अधिकारी के नेतृत्व में और स्पेशल CP क्राइम के सुपरविजन में काम करेगी। इस संबंध में आदेश कल ही जारी कर दिए गए हैं। अंत में हम दिल्ली पुलिस की तरफ से सभी शांतिपूर्ण प्रोटेस्टर्स और जंतर मंतर पर दिन रात काम कर रहे वॉलंटियर्स का भी धन्यवाद करना चाहते हैं। इन्होंने इस पूरे समय शांति व्यवस्था और कम्युनिटी सिक्योरिटी बनाए रखने में दिल्ली पुलिस की भरपूर सहायता की है। दिल्ली पुलिस आगे भी अपने ऑफिशियल हैंडल्स के माध्यम से वेरिफाइड जानकारी साझा करती रहेगी और किसी भी महत्वपूर्ण घटनाक्रम की जानकारी समय समय पर आप सभी तक पहुंचाती रहेगी। अंत में मीडिया के सभी साथियों, आज यहां आने के लिए और अपना कीमती समय यहां देने के लिए आप सभी का धन्यवाद। जय हिंद।
12: रोहित जी, इसमें एक दो चीजें और।
0: दिल्ली पुलिस प्रेस ब्रीफिंग ऑन हाउ द दिल्ली पुलिस आर फाइटिंग फेक न्यूज दैट इज बीइंग स्प्रेड थ्रू सोशल मीडिया एंड अमिड द ऑनगोइंग प्रोटेस्ट, द स्टूडेंट प्रोटेस्ट ओवर नीट पेपर लीक एंड the Delhi police mentioned that how social media, specifically Instagram, is being used extensively for these protest related information and but on Instagram there are certain content which are in fact accounts which are peddling misleading claims and there are misleading posts also, and this is also impacting the law and order situation negatively. And the Delhi police have clearly claimed that not everything that you see on social media is true. They are continuously monitoring fake news and they are also fact checking the social media claims. He also mentioned about some of the cases. There were claims which were being made that a woman has died due to violence in the July 20 protest, which was a fake news. Then the police also mentioned about Kejriwal's video claiming that center is going to crack down on protesters. Even those were false claims by Arvind Kejriwal. With that, we're now slipping into a very short break. We'll be right back with more stories on the other side.
13: You are watching India Today.
14: All sports, all the time, right here on TuneIn. Catch live sports talk, expert analysis, and nonstop discussion from your favorite stations, like ESPN Radio.
15: Not missed out on one player that the Yankees wanted.
14: Big 12 Radio.
16: Today is Big 12 Insiders game day. We're breaking
14: and
16: down.
14: Talk sports.
17: I just can't see a turnaround in the way that we're going to perform and result.
14: And much more. Get your head in the game and never miss a minute of the action. Just search sports or ask your device to play your favorite sports talk station on TuneIn.
18: Caste which were dominating India was suddenly being challenged,
19: and that was a movement which actually changed India in many ways.
20: Aur kya karenge jeevika ke liye to kuch karna hi hoga aur hamari prashasan jo hai yahi ab chah rahi hai aur yahi karenge.
21: BP Singh and actually implementing the reservation because his government he thought would fall.
22: I ask you, the youth of India, not to entertain these fears. Your interest is uppermost in my mind. I ask you for trust and patience. I ask you to join me in building a better future.
19: Changed Indian politics in many ways and brought caste back openly into the equation of politics.

0: मित्रों, ये आज हमारे सौरभ दास और के साथ तीसरी मुलाकात है और आज भी लंबी बातचीत हुई। ये आज एक रिटन मसौदा लेकर के आए थे जिसमें उन्होंने एजिटेशन में चल रहे केसेस के बारे में 4 पॉइंट्स दिए थे और उसके साथ साथ जो बाकी 2 डिमांड्स 4 पॉइंट्स दिए थे और उसके साथ साथ जो बाकी 2 डिमांड्स थी, रिटेलिएटरी मेजर्स ना लिए जाए, कंपनसेशन दिया जाए और इनके 5-पॉइंट चार्टर को कंसिडर किया जाए, उस पर डिटेल में चर्चा हुई। डिटेल में चर्चा होने के पश्चात सबसे पहली बात तो ये है कि जो इनका एक 4 पॉइंट्स था उसका लबोलबाव ये था कि कोई भी एक्शन FIR न हो और अगर है तो वो विड्रॉ हो, वो चाहे दिल्ली पुलिस के द्वारा हुआ हो चाहे वो BJP रूल स्टेट्स में कहीं हुआ हो, तो वो FIR की कॉपी भी इनको हम देंगे और उसको विड्रॉ करने की बात कोई भी एक्शन नहीं होगा। इस बात को सरकार ने स्वीकारा है जो प्रोटेस्टर्स के साथ प्रोटेस्ट के दौरान हुआ है। उसी तरीके से फ्यूचर में भी जो ऑर्गेनाइजर्स हैं और प्रोटेस्टर्स हैं उनका इस केस इस एक्टिविटी के लिए कोई भी उन पर आगे केस नहीं होगा, इस बात को हम लोगों ने माना है। हमें करेक्ट। दूसरी बात जो कही गई है वो ये है कि कंपनसेशन के बारे में, तो कंपनसेशन के बारे में सरकार ने बड़े स्पष्ट शब्दों में कहा है, हमारी भी सहानुभूति है, जान किसी बच्चे की जाए और उसके प्रति हम भी सहानुभूति रखते हैं और सरकार प्रधानमंत्री मोदी जी अत्यंत सहानुभूति के साथ हम सब लोगों ने कहा है कि ऑनरेबल कंपनसेशन अकॉर्डिंग टू द रूल्स एंड रेगुलेशंस वट एवर मैक्सिमम विल बी पॉसिबल दैट विल बी गिवन टू देम। और उसी तरीके से ये जो 5-पॉइंट चार्टर है जो आपने मुझे परसों दिया, कल दिया था, उस 5-पॉइंट चार्टर पे हमारा कहना ये है जो एजुकेशन के एग्जामिनेशंस के रिफॉर्म्स के से जुड़ा हुआ है उसके बारे में हमारा ये कहना है कि हम एजुकेशन के एग्जामिनेशन के रिफॉर्म्स के लिए जो आपका चार्टर है उस पर हम गहन चिंतन भी करेंगे और आपके डेलीगेशन के साथ बातचीत करके जो कुछ भी हम डेलीबरेट कर सकेंगे वो हम करने का प्रयास करेंगे। तो ये इनके डिमांड्स थी। मेरे ख्याल से इन्होंने जो डिमांड्स रखी थी उन सबको सरकार ने सहानुभूतिपूर्वक माना भी है और एक्सेप्ट भी किया है। मेरा निवेदन है कि आप सबसे कि हमारे जो आंदोलन करने वाले हैं वो अपने एजिटेशन को विड्रॉ करें और पीसफुली हम सब लोग आगे बढ़े, ऐसा मेरा निवेदन है।
1: ऑन दैट नोट द कॉक्रोच जनता पार्टी डिक्लेयर्स दैट वी विड्रॉ द एजिटेशन इन गुड फेथ एंड अंडरस्टैंडिंग दैट द एग्रीड अपॉन टर्म्स विल बी एग्जीक्यूटेड विद इन द एग्रीड अपॉन टाइमलाइन। हम तमाम मांगे जो हमारी थी वो मान ली गई है, तो हम इमीडिएट इफेक्ट से प्रोटेस्टर से रिक्वेस्ट करते हैं कि आप विड्रॉ करें, पीसफुली अपने घर वापस जाएं और आगे की जो भी हमारी रणनीति होगी या बातचीत होगी उससे हम आपको अवगत कराएंगे, लेकिन प्रोटेस्टर से हम रिक्वेस्ट करते हैं कि इमीडिएट इफेक्ट से आप विड्रॉ करें, हमारी मांगे जो है वो मान लीजिए।
0: चलो हो गया, आप सारी बातें बता दी, हो गया।
2: आप Kokroch Janata Party now calling off its agitation. This after all their demands have been met. A joint press conference in which the two representatives of the central government and the representatives of the CJP agreed that their talks have been all fruitful. All the demands of the protesting students and the group which has been leading it, which is the Kokroch Janata Party, has been met. And hence, the student agitation has been called off. It is the end of the stalemate. End of the stalemate after Dharmendra Pradhan's resignation. The handshake certainly showing that all the demands have been met, and the CJP now urging students and protesters across the country to go back to their homes. The demands included compensation for those families who have lost their students in because of NEET stress, and also promise that there'll be no further FIRs against protesting students. Let me cut across to Constitution Club again.
3: कि वो पीसफुली विड्रॉ करें, हमारी जो भी मांगे थी वो मान ली गई है, आगे की जो भी रणनीति होगी उससे हम आपको जल्द अवगत कराएंगे, हमारा जो भी मांगे थी वो मान ली गई है, आगे की जो भी रणनीति होगी उससे हम आपको जल्द अवगत कराएंगे, हमारा जो डिमांड चार्टर है वो हमने सरकार को सबमिट किया है, परसों कल सबमिट किया था, और सरकार से अगले चार हफ्तों में फिर से हमारे डेलीगेशन की मुलाकात होगी उस डिमांड चार्टर को लेकर. लेकिन अभी हम सब तमाम हमारे जो भी सपोर्टर्स हैं, प्रोटेस्टर्स हैं, जो अलग अलग जगहों पर मौजूद हैं, जंतर मंतर पर मौजूद हैं, उनसे हम रिक्वेस्ट करते हैं कि पीसफुली विड्रॉ करें.
4: देखिए हम लोग पहले से ही कॉन्फिडेंट थे कि
5: एंड कोई भी ताकत हो वो देश के फ्यूचर के सामने अड़ी नहीं रह सकती. हमारे जो डिमांड्स थे कोई रेवोल्यूशनरी कोई रेडिकल डिमांड्स नहीं थे. जो बेसिक मिनिमम अकाउंटेबिलिटी होना चाहिए था उसकी मांग थी. जो फैमिलीज के नीट के लीक के वजह से सुसाइड करके मर गए उनके डिग्निटी के लिए ये आंदोलन था. एंड साथ साथ जो प्रदर्शनकारी थे जिन्होंने इन डिमांड्स को आगे रखा, उनके खिलाफ सरकार या उनकी एजेंसीज कोई एक्शन ना ले, वो डिमांड था. ये तीनों डिमांड बहुत रीजनेबल डिमांड्स थे एंड बहुत ज़्यादा टाइम लग गया इस चीज़ को एक्सेप्ट करने में, लेकिन हम खुश हैं कि ये सारे डिमांड्स एक्सेप्ट हुए.
6: बदनाम करने की कोशिश की जा रही है. आप सभी लोग देख रहे हैं कि किस तरह से आम लोगों पर भी अलग अलग टैग्स लगाए गए, एंटी नेशनल बोला गया, पाकिस्तानी बोला गया. लेकिन हमें बहुत खुशी है कि इस देश के युवा ने सच्चाई देखी, इस देश के युवा ने हमारा इंटेंट देखा और जिस मुद्दे के लिए हम लोग लड़ रहे थे उस मुद्दे से सभी लोग रेजोनेट किए और बहुत पीसफुली 37 दिन से हम लोग जंतर मंतर पर मौजूद रहे. सब कुछ बहुत पीसफुली हुआ और हमें बहुत खुशी है कि अब हम लोग जब विड्रॉ करेंगे तो वो भी बहुत पीसफुली होगा. हम लोगों ने स्टार्टिंग से जो भी कॉकरोच जनता पार्टी के सपोर्टर्स हैं बहुत ही पीसफुल पढ़े लिखे सपोर्टर्स हैं, बहुत ही समझदारी से उन्होंने अपने आप को कंडक्ट किया. ये बात आपकी सही है कि कुछ एंटी सोशल एलिमेंट्स स्टेज के पिछले लास्ट 3-4 दिनों में घुसे हैं जिन्होंने वहां पर माहौल खराब करने की कोशिश की. लेकिन तमाम दिक्कतों के बावजूद ना सिर्फ एंटी सोशल एलिमेंट्स बल्कि तमाम जो दिक्कतें हमने पिछले 37 दिनों में फेस की है उन सबके बावजूद हम लोग वहां पर डटे रहे, हमारे युवा वहां पर डटे रहे और आज फाइनली 37 दिन बाद हमारी मांगे मान ली.
5: इसी में एक चीज मैं ऐड करना चाहूंगा, जिन्होंने भी ऐसा एंटी सोशल एलिमेंट्स ने मीडिया के खिलाफ लोगों के खिलाफ जिन्होंने भड़काया जिन्होंने ये वायलेंस किया, ऐसे लोग सीजेपी के सपोर्टर नहीं है, ये एंटी सोशल एलिमेंट्स घुसाए गए, हम लोग ऐसे एक्शंस के लिए हम लोग उनको खंडन करते हैं। लेकिन आपके माध्यम से ये मैं जरूर कहना चाहता हूँ, रिपोर्टर्स नहीं लेकिन जो मीडिया के ओनर्स हैं एंड जो एंकर्स हैं और जो एडिटर इन चीफ्स हैं, उनको मिलके एक डिस्कशन करना चाहिए कि युवाओं के अंदर उनके खिलाफ इतना आक्रोश क्यों है। क्योंकि आप ये जरूर समझ लीजिए, जिस तरीके का प्रोपेगेंडा चलाते हैं कुछ चैनल्स, उससे लोग खुश नहीं है। एक ना एक दिन ऐसा आएगा जब युवा ऐसे ही डिमांड लेके आगे बढ़ेगा, एंड उस टाइम पे उनका भी आंसरेबिलिटी बिल्कुल जस्टिफाई नहीं होता, बिल्कुल जस्टिफाई नहीं होता है। लेकिन उसी पॉइंट पे मैं बोल रहा हूँ कि आप जो मीडिया चैनल्स के ओनर्स हैं और एंकर्स हैं, उनको समझना चाहिए कि वो कैसे अपने रिपोर्टर्स को ऐसे रिस्क जोन में भेजते हैं, ऐसे लोगों के अंदर क्यों ऐसे फीलिंग्स है। बिल्कुल नहीं मानना चाहिए, कोई भी वायलेंस का इस मूवमेंट में या कोई दूसरे मूवमेंट में और इस देश में कोई स्पेस नहीं है, ये हम लोग क्लियर कर देना चाहते हैं। सिमरन बताइए।
6: हम लोगों ने अभी जो भी आज सरकार से अलाइनमेंट हुआ है, क्योंकि अभी तक हमारे पास एफआईआर की कोई भी कॉपी नहीं है, कोई भी एफआईआर की कोई भी कॉपी अभी तक हमें मौजूद प्रोवाइड नहीं कराई गई है। लेकिन जो सरकार से अलाइनमेंट हुआ है कि हमारी प्रोटेस्ट 20 जुलाई का इवेंट और उससे पहले के जितने भी दिन थे, वो पिछले कुछ दिनों में अगर किसी भी प्रोटेस्ट को लेकर अगर कोई एफआईआर लॉन्च हुई है तो उसको विड्रॉ किया जाएगा, ना सिर्फ दिल्ली पुलिस द्वारा बल्कि पूरे देश भर में अलग अलग जगहों पर भी अगर एफआईआर हुई है तो उन्हें विड्रॉ किया जाए। और फ्यूचर में कोई भी ऐसी एफआईआर या कानूनी कार्रवाई प्रोटेस्टर्स या ऑर्गेनाइजर्स पर ना करी जाए। बाकी जो डिटेल्स हैं वो एक बार अगर हमें एफआईआर की कॉपी मिलेगी, रिटर्न स्टेटमेंट सरकार से मिलेगा तो हम इस बारे में
7: असामाजिक तत्व है, जो असामाजिक तत्व है जिन्होंने हिंसा फैलाई उनके खिलाफ पुलिस एक्शन ले।
8: आप दोनों से सिर्फ एक क्वेश्चन है, आप लोगों ने जैसे अभी यहाँ से कहा है कि मीडिया के साथ बदतमीजी हुई वो नहीं होनी चाहिए थी, क्या यही बात आपको जब मंच से नहीं कहना चाहिए था?
6: I think if I may answer this question, मैं खुद 37 दिन से मंच संचालन कर रहा हूँ डेली। मैं खुद 5 बार अनाउंसमेंट करता हूँ कि हमें शांति बना के रखनी है, हमें मीडिया से बदतमीजी नहीं करनी है। ये हम लोग खुद अपने लेवल पे इंश्योर किए, और जैसा कि हमने बोला किसी भी प्रकार की कॉकरोच जनता पार्टी के किसी भी प्रदर्शन में, किसी भी आंदोलन में हिंसा का कोई स्थान नहीं है। हम लोगों ने पहले दिन से सिर्फ और सिर्फ 2 चीजें मेंटेन की हैं कि हम लोग पीसफुल रहेंगे और हम संविधान से चलेंगे।
5: बीबीसी एक मिनट, बीबीसी अच्छा ओके। और कोई क्वेश्चन? एक मिनट रुकिए।
2: सो लेट्स कट अक्रॉस।
9: ये एक लोकतंत्र की जीत है जो आज हमने देखा, और इसे ऐसा ही आगे भी हम सुरक्षित रखें लोकतंत्र को भारत में। और देश की युवा पीढ़ी को मैं बधाई देना चाहता हूं और धन्यवाद देना चाहता हूं सीजेपी के हमारे टीम और भाइयों और बहनों को जिन्होंने ये मुद्दा उठाया सबसे पहले, और जो वॉलंटियर्स जिन्होंने उनका साथ निभाया, जो देश भर से छात्र और युवक और बड़े बूढ़े। लोकतंत्र के लिए खड़े हुए उन सब

0: 49-day-long protest.
1: You are watching India Today.
2: Turn it up with today's hits on TuneIn. We're bringing you the songs everyone's talking about, all in one place. Hear the biggest tracks right now from today's top artists. Day or night, today's hits keeps the energy going. Start listening now. Just search today's hits or ask your device to play today's hits on TuneIn.
3: Hey, लाइफ में स्क्रैचेस तो आएंगे. गाड़ी के स्क्रैचेस को तो कॉस्मो पीपी अब संभाल लेगा. आप अपना देख लो.
4: The India Today Media Institute could not have been founded on a firmer footing. The India Today Group's strength in understanding and delivering high quality content is the very foundation of ITMI. We take pride in training our students to be exceptionally professional. So register now at www.indiatodaymediainstitute.in or call us on 95-600-65465.
5: Upper caste, which were dominating India, was suddenly being challenged.
6: And that was a movement which actually changed India in many ways.
7: और क्या करेंगे, जीविका के लिए तो कुछ करना ही होगा और हमारी प्रशासन जो है यही अब चाह रही है और यही करेंगे.
8: बीपी सिंह एक्चुअली इंप्लीमेंटिंग द रिजर्वेशन बिकॉज हिज गवर्नमेंट ही थॉट वुड फॉल.
9: आई आस्क यू द यूथ ऑफ इंडिया नॉट टू एंटरटेन दीज फियर्स. योर इंटरेस्ट इज अपरमोस्ट इन माय माइंड. आई आस्क यू फॉर ट्रस्ट एंड पेशेंस. आई आस्क यू टू जॉइन मी इन बिल्डिंग अ बेटर फ्यूचर.
6: Changed Indian politics in many ways and brought caste back openly into the equation of politics.

रुपए नहीं होते बोल रहे थे, और देश का युवा जब बाहर निकल आया तब उसने बोला दीपा भी होगा, पुलिस वालों पे एफआईआर

0: sorry.
1: अरे उठा ले रे देवा उठा ले, मुझको नहीं इनको। अरे क्या मैकेनिक बनेगा तू? अरे तेरे को बोला था मैंने गाड़ी टाइम पे देने का।
2: हेलो, क्या ये नोबेल प्राइज विजेता का घर है?
1: अरे नहीं रे, ये डोनाल्ड ट्रंप का घर है। गलत नंबर लग गया तेरे को। अरे पीटर,
2: सर ये इजराइल वाली गाड़ी लगातार धुआं फेंक रही है।
1: हलकट, तेरे को कितनी बार बोला हाथ भी मत लगाने का इसको। वो ऑटो पायलट, अरे बाबा उसमें एक भी स्क्रैच आया ना तो अपना पूरा गैराज बंद हो जाएगा पूरा।
2: हेलो, क्या मेरी बात नोबेल प्राइज विनर से हो रही है?
1: देवा, अरे कौन है ये जले पे नमक छिड़क रहा है बाबा? मैं फोन में घुस के तेरे को मारूंगा। रख फोन, रख। अरे राजू, मेरा मागा वाली टोपी का है रे बाबा।
3: सर ये ईरान वाली गाड़ी के नट बोल्ट ढीले कर दूं?
1: अरे एक काम कर, इसमें सीज फायर वाला कूलेंट डाल दे रे बाबा, इंजन बंद कर दे इसका। मेरा कोई लड़ाई झगड़ा पसंद ही नहीं है रे बाबा।
3: लेकिन सर ये हॉर्मोन खोल ही नहीं रहे अभी भी।
1: मार साले को, दोनों वाइपर तोड़ दे। एक काम कर, इसका पूरा तेल निकाल ले। ये ले पाइप डाल, एक से गैस निकाल, एक से तेल निकाल।
3: और तीसरे पाइप से?
1: अरे तीसरा खाली छोड़ दे रे बाबा, वो दुश्मनों के लिए है, उससे कुछ नहीं आएगा। ये डोनाल्ड ट्रंप का स्टाइल है बाबा।
2: सर ये गाड़ी पाकिस्तान की है, बड़ी शोर मचा रही है।
1: अरे उसमें चाइना का इंजन लगा रहा है बाबा, क्या मस्त जोक मारा।
3: अरे कौन है?
2: हेलो, क्या आप नोबेल प्राइज चाहते हैं?
1: अरे कौन सा वाला नोबेल है रे, सीज फायर वाला या धमकी वाला? एक काम करने का, दोनों भेजने का, दोनों एक अगले साल ले लूंगा। मस्त भेजने का।

जब से देश में भारतीय जनता पार्टी की सरकार आई है तो हमारे बच्चों के पेपर सेल होने लग गए थे, लीक कर दिए जाते थे, पेपर बेच दिए जाते थे और उसके खिलाफ देश भर के लाखों बच्चे सड़कों पे आए और आज मैं समझता हूं हमारे लाखों बच्चों की जीत हुई है और देश का अहंकारी राजा का अहंकार टूट गया है और भारतीय जनता पार्टी का पतन स्टार्ट हो गया है। आज के बाद यही बच्चे जो प्रोटेस्ट कर रहे थे, यही देश का जुबा जब किसी भी स्टेट की इलेक्शन आए या नेशनल इलेक्शन आए तब भारतीय जनता पार्टी को करारा जवाब भी देंगे वोट की जरिए।

0: The students, the protesters Absolutely. Who took to the streets for 49 days. I want to thank all my guests Absolutely. And take you through this report. Now, Dharmendra Pradhan has resigned as education minister. The centre and the CJP have reached what appears to be a consensus on moving forward, how those promises will be fulfilled. But I want you to look at not just some of these images of the students, the protesters meeting the two union ministers, but what happened over 49 days on ground and how the students are reacting to it today. We bring you this report.
1: हो गया पहला थॉट मन में क्या आया था
2: We hugged each other. That was the unity which we could not think of anything. I could not believe कि हो गया है.
1: सबसे बड़ा वेपन क्या था इस पूरे प्रोटेस्ट में आप लोगों का?
3: I think social media. Because social media पे control government नहीं कर सकते.
4: Also unity. Because कितना भी सरकार ने इतना ज़्यादा तोड़ने की कोशिश करी, इतना ज़्यादा अलग करने की कोशिश करी, हर एक एडी से छोटी तक का जोर लगा लिया.
1: When you heard that पाकिस्तान पैसा, अमेरिका, चाइना, ये कहाँ के लड़के हैं, पॉलिटिकल पार्टी वाले हैं,
4: हम लोग को गुस्सा इतना नहीं आ रहा था, हम लोग को हंसी आ रही.
5: गवर्नमेंट ने बहुत लेट लगाया अकाउंटेबल होने के लिए, बट उसकी वजह से बहुत लोगों को सफर करना पड़ा है. बहुत सारे मिलेनियल्स हैं जिन्होंने बहुत सारे पेपर लीक्स हुए हैं पहले, जिसकी अकाउंटेबिलिटी एनटीए को लेनी चाहिए थी, गवर्नमेंट को लेनी चाहिए थी, लेकिन नहीं ली थी. लेकिन अब फाइनली समथिंग इज हैपनिंग बिकॉज ऑफ जेन ज़ी.
6: अभी यह प्रोटेस्ट जारी रहेगा. अभी हमारी डिमांड्स बाकी हैं. अभी जितने स्टूडेंट्स सुसाइड किए थे नीट लीक के कारण, अभी उनको कंपनसेशन नहीं मिला है. और दूसरी चीज,
7: सरकार ने कह दिया कि उस वो बात को जो है वो मान लिया जाएगा. और कल भी जो है वो कहा गया था,
6: सरकार के बात पे हमें उतना भरोसा है नहीं. हाँ. क्योंकि सरकार को हमारी ही बात सुनने में 20 दिन से ऊपर लग चुका है. ठीक. दूसरी डिमांड हमारी ये है कि जितने भी प्रोटेस्टर्स को डिटेन किया गया है, या फिर जो एनएसए की बात हो रही है, एनएसए एक्ट लगाने की बात हो रही है, उनके द्वारा क्या डिटेन किया जाएगा, इस पे सरकार की एम्बिग्युटी अभी तक बाकी है.
0: Finally, when you look at these pictures of what happened over 49 days, you had students who took to the streets, you had Sonam Wangchuk, and you must listen to Sonam Wangchuk also talking about how he insisted that the entire movement must remain absolutely peaceful and that students must protest but not target security forces. There were unruly scenes. There were reports of stone pelting at the forces, vandalism, violence, cameras being stolen or targeted. The CJP protest was playing out not just on the streets, but this was a protest that actually went viral online, on internet. Gen Z, they're now being described as Gen Ziddi. They've actually turned memes, reels, pop culture references and even posters into their weapons of protest. From celebrity silence to that Vijeta Dhaiya Burger episode to Taylor Swift references, the protest found its own digital language. And Gen Z was sending out a message to the millennials, to the boomers, that they had their own language of protest. We bring you more in this video.

0: इससे बच्चों की जान बची रहे और शिक्षा प्रणाली थोड़ा सरल बनाया जाए। ये जो परीक्षा है, परीक्षा में जैसे चर्चा बोलते हैं, तो उसको अच्छी तरह से क्या है, उसमें कैसे सुझाव, अच्छे सुझाव लेके उस पर अच्छा कार्य करे सरकार। मेरी यही गुजारिश है कि आने वाले समय में कोई बच्ची या कोई भी छात्र इस वजह से सुसाइड ना करे, क्योंकि जो दुख मैं झेल रहा हूँ वो मुझे पता है। तो मेरी यही है कि इसको कॉम्पेंसेशन तो कोई बड़ी बात है नहीं, देखो। हाँ, जिनको जो बेचारे जरूरत है, जिन्होंने कर्ज वर्ज लिया है, उनको देना चाहे उनको दे दें, लेकिन हमें तो कोई ऐसा उसकी वो नहीं है, नहीं वैसे मुझे।
1: शिक्षा प्रणाली को पूरा फिक्स करने की जरूरत है। आपकी बेटी की जब डेथ हुई, तो उससे पहले उन्होंने क्या बताया था नीट और रीनीट के बारे में आपको? वो कितनी परेशान हो गई थी रीनीट के वजह से?
0: जी मैम, एक्चुअली वो मैम उसने इस बार जो है पूरी बहुत मेहनत की थी। उसने सुबह से शाम तक पढ़ती रहती थी, शाम को 6 बजे के बाद वो खाना नहीं खाती थी कि नींद आती है बोल के हल्का खाना, फ्रूट जूस वगैरह पी के सोती थी। 2 से 3 बजे तक, रात 4 बजे तक भी पढ़ती थी वो, मतलब बहुत ज्यादा उसे वो था। और 3 मई को पेपर हुआ, वो आई, हमने तो कुछ पूछा नहीं उससे, वो आई, खुश थी वो, और उसने खाना वाना खाया, ऑनलाइन कुछ मंगाया उसने, आया और जाके रिलैक्स हो गई, ऐसे हो गई फ्री हो गई जैसे। उसने बोला कि आज हल्का हो गया, मैंने हमने कुछ बोला नहीं। अगले दिन मैंने पूछा कि ठीक हुआ पेपर, अच्छा हुआ? बोला हाँ अच्छा हुआ। मैंने बोला इसका मतलब इजी था क्या पेपर? बोला ना ना, इजी थोड़ा होता है नीट का पेपर पापा, बहुत हार्ड बनाते हैं ये लोग, ऐसे बोल रही थी। तो मैंने बोला अच्छा ठीक है, तेरे ठीक क्या, हाँ मेरा अच्छा गया। बोला उसके बाद तो फिर जब कुछ दिनों बाद मैसेज आया कि पेपर लीक हो गया है, तो मैं घर जैसे आया तो उसने मेरे को ये बोला कि पापा पेपर लीक हो गया। मैंने बोला नहीं नहीं ऐसे अफवाह होगा, मैंने बोला। तो बोला नहीं नहीं लीक हो गया पापा, पहले भी हुआ था अब फिर हो गया, अब ये हमारे लिए तो बहुत टेंशन वाली बात हो गई है, बोला। मैंने बोला यार मत ले टेंशन, अब क्या कर सकते हैं, कोई नहीं, क्या पता अभी देख नहीं हुआ होगा, लेकिन लीक हो गया था। तो उसके बाद वो एनटीए पे उसने बहुत सवाल किए मेरे से कि ये एनटीए बनाया किसने, जब ये हमें इतनी स्ट्रिक्ट प्रतिबंध हमारे ऊपर है जब हम पेपर देने जाते हैं कि 2 मिनट, क्योंकि पिछली बार हम भी थोड़े से लेट हो गए थे, जब एक बार पिछली बार इसने दिया था तो उस समय उसकी तबीयत खराब हो गई थी वो, लेकिन हम पहुंच गए थे टाइम में, और उसके बाद कान से भी उतरवा दिया थे उसके बुंदे, और ये हाथ में जो जैसे कलावा वगैरह पहनते हैं ये भी निकलवा देते, क्लिप वगैरह कुछ नहीं, चप्पल में जाना है। तो मतलब बोलती थी कि हम लोगों के लिए इतना स्ट्रिक्ट है और लेकिन ये लीक कैसे हो जाता है, ये इससे तो हमारे तक कट ऑफ ही नहीं आएंगे, हमें पता नहीं चलेगा, पता नहीं किस किस के पास ये पेपर पहुंच जाते होंगे। तो कट ऑफ बहुत ऊपर जाता है, 720 में 720 तो आजकल तो इतने बच्चों के आ रहे, पहले ऐसा होता नहीं था। ये सारी चीजें वो बताती थी कि ये एनटीए जो है ये सही नहीं है, सीधा सीधा उसने यही बोला था मेरे को कि पापा ये एनटीए ठीक नहीं है, ये सही तरीके से काम नहीं कर रहे हैं। तो मैं तो खैर मेरे को भी इतना नॉलेज तो था नहीं इसके विषय में, मैंने बोला चलो ज्यादा मत सोचो। फिर उधर जी मैम
1: मायूसी उस बच्ची की, और बहुत सारे ऐसे बच्चे लगभग 20 से ऊपर जिन्होंने अपनी जान गंवा दी इसी मायूसी में क्योंकि पेपर लीक हुआ। लेकिन एजुकेशन सिस्टम जिसने बच्चों को इतना बेबस बनाया है, आपको लगता है ये प्रोटेस्ट और वो सब के बाद वो एजुकेशन सिस्टम मजबूत हो पाएगा?
0: जी मैम, ये शुरुआत है। देखिए आपने अभी देखा होगा कि सारे बच्चों ने कितना प्रोटेस्ट किया, तो अभी ये समझना चाहिए सरकार को कि बच्चों को के ऊपर एक वो बोझ सा बन गया ये शिक्षा प्रणाली, उससे बच्चे परेशान हैं, तो उसको सुधारने के लिए इनको बहुत ज्यादा प्रयास करने की आवश्यकता है। और मैं चाहता हूँ मैं तो अब मेरी बेटी तो आएगी नहीं वापस, लेकिन जो हमारे देश के बच्चे हैं भविष्य हैं उनके लिए ऐसा सरल तरीके से मतलब बनाए इसे, जैसे कोई भी संस्था जो पहले भी चलाती होंगी, शायद इतना पहले सुना नहीं हमने कि आत्महत्या किया या ऐसा किया, आजकल ही सुनने में आ रहा है ज्यादा। तो इसमें बहुत ज्यादा सलाह लेकर सरकार को हर बड़े बड़े ज्ञानी

0: लोग हैं, हमारे देश में कमी है नहीं, बहुत विद्वान लोग हैं, उनके साथ संपर्क करके इसको थोड़ा सरल बनाने, मेरी यही गुजारिश है गवर्नमेंट से। क्योंकि मेरी बेटी भी कोई पढ़ने वाली, बहुत ज्यादा पढ़ने वाली लड़की थी, होनार थी पूरे क्षेत्र में, 97% उसके थे ट्वेल्थ में, 99% उसके बायोलॉजी में थे, तो बहुत ही बुरा हुआ। एक मैंने तो अपनी बेटी खोई, लेकिन एक होनार बच्ची हमारे क्षेत्र ने खोया, देश ने खोया। ऐसे वो बच्चे भी, बाकी भी सब होनार बच्चे थे, पढ़ने वाले थे, तो पढ़ने वाले होते हैं वो ले लेते हैं, स्ट्रेस लेते हैं, जब उनके साथ कुछ बुरा होता है तो उनको मुश्किल होता है बहुत। जी मैम,
1: राजेश माल जी आपने सही बोला, पढ़ने वाले बच्चे स्ट्रेस लेते हैं।
0: जी,
1: हम लोग सब स्टूडेंट्स रहे हैं, स्टेज से गुजरे हैं, तो हमारे साथ जुड़ने के लिए आज शुक्रिया।
2: TuneIn's How To, a brief look at all the special functions and things you might not know we have.
3: TuneIn has got your favorite podcast, from sports to special interests. Did you know that you can listen to all your favorites offline? It's simple. Just head to any podcast page, tap the three little dots next to the episode title, and hit download. Whether it's true crime, lifestyle, health, and science, or anything else, stream your favorite podcasts and listen to them anytime, anywhere.

हेलो एवरीवन, आप सबको बहुत बहुत बहुत बधाई। हमारे देश के युवाओं को, जेंजी को बहुत बधाई। बहुत खुशी की बात है, आप लोगों का संघर्ष रंग लाया। धर्मेंद्र प्रधान को अल्टीमेटली इस्तीफा देना पड़ा। ये पूरी डेमोक्रेसी की बहुत बड़ी जीत है। हमारे देश में लोगों का जनतंत्र से भरोसा ही उठ गया था। लोगों को लगने लगा था कि सरकारें सुनती नहीं है। जनता सरकारों के सामने चिल्लाती रहती थी, गिड़गिड़ाती रहती थी। हर चीज के लिए हम सरकार को हाथ जोड़ते रहते थे, पैर पकड़। सरकारें कभी सुनती नहीं थी। इतना बड़ा संघर्ष हुआ और अल्टीमेटली सरकार के अहंकार को झुकना पड़ा, जनता के सामने झुकना पड़ा। ये बहुत बड़ी जीत है, पूरे जनतंत्र की जीत है, डेमोक्रेसी की जीत है। और सरकार को भी अब समझ लेना चाहिए कि आपको जनता की सुननी पड़ेगी। ये डेमोक्रेसी है, डेमोक्रेसी इज बाय द पीपल, ऑफ द पीपल, फॉर द पीपल। मैं उम्मीद करता हूं कि सरकार नीट के सिस्टम को ठीक करेगी, ताकि अगली साल अब से पेपर लीक होना बंद हो जाए इस देश के अंदर। अब हमारे बच्चों को आत्महत्या ना करनी पड़े। जय हिंद।

सल्यूट। दोस्तों सीटे नहीं होते बोल रहे थे, और देश का युवा जब बाहर निकल आया तब उसने बोला इस्तीफा भी होगा, पुलिस वालों पे FIR भी होगा और सरकार भी झुकेगी। एक बार अपने लिए जोर

0: Make your media plan smarter with India Today Live TV on your connected devices. Amplify your brand with 100 million smart internet viewers. To advertise, mail us at sales@aajtak.com.
1: उठा ले रे देवा उठा ले मुझको नहीं इनको। अरे क्या मैकेनिक बनेगा तू? अरे तेरे को बोला था मैंने गाड़ी टाइम पे देने का।
2: हेलो, क्या ये नोबेल प्राइज विजेता का घर है?
1: अरे नहीं रे, ये डोनाल्ड ट्रंप का घर है। गलत नंबर लग गया तेरे को। अरे पीटर,
2: सर ये इजराइल वाली गाड़ी लगातार धुआं फेंक रही है।
1: हलकट, तेरे को कितनी बार बोला हाथ भी मत लगाने का इसको। वो ऑटो पायलट, अरे बाबा उसमें एक भी स्क्रैच आया ना तो अपना पूरा गैराज बंद हो जाएगा पूरा।
2: हेलो, क्या मेरी बात नोबेल प्राइज विनर से?

0: अरे कौन है ये जले पे नमक छिड़क रहा है बाबा? मैं फोन में घुस के तेरे को मारूंगा। रख फोन, रख। अरे राजू, मेरा मागा वाली टोपी कहाँ है रे बाबा?
1: सर ये ईरान वाली गाड़ी के नट बोल्ट ढीले कर दूं?
0: अरे एक काम कर, इसमें सीज फायर वाला कूलेंट डाल दे रे बाबा, इंजन बंद कर दे इसका। मेरा कोई लड़ाई झगड़ा पसंद ही नहीं अरे बाबा।
1: लेकिन सर ये हॉर्मोन खोल ही नहीं रहे अभी भी।
0: मार मार साले को, दोनों वाइपर तोड़ दे। एक काम कर, इसका पूरा तेल निकाल ले। ये ले पाइप डाल, एक से गैस निकाल, एक से तेल निकाल।
1: और तीसरे पाइप से?
0: अरे तीसरा खाली छोड़ दे रे बाबा, वो दुश्मनों के लिए है, उससे कुछ नहीं आएगा। ये डोनाल्ड ट्रंप का स्टाइल है बाबा।
1: अरे गाड़ी पाकिस्तान की है, बड़ी शोर मचा रही है।
0: अरे उसमें चाइना का इंजन लगा रहा है बाबा, क्या मस्त जोक मारा।
1: अरे कौन है? हेलो, क्या आप नोबल प्राइज चाहते हैं?
0: अरे कौन सा वाला नोबल है रे, सीज फायर वाला या धमकी वाला? एक काम करने का, दोनों भेजने का, दोनों एक अगले साल ले लूंगा, मस्त भेजने का।
2: Hey, this is Freddie Coleman from Freddie and Harry. Stay on top of the Major League Baseball season with ESPN Radio. Get daily sports talk covering every big moment from around the league.
3: To right field, and it will leave.
2: From the first pitch of the season to the stretch run,
3: and that's the ball game.
2: We've got you covered with analysis, storylines, and insider perspective. And all season long, catch select live games so you can tune in for key matchups and hear the action unfold. Search ESPN Radio or tell your device to play ESPN Radio on TuneIn to listen.
4: Sales at AajTak.com.

नहीं होते बोल रहे थे, और देश का युवा जब बाहर निकल आया तब उसने बोला फीफा भी होगा, पुलिस वालों पे एफआईआर भी हो।